सुमिता ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ETF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.1 MHz वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर आकाशवाणीचं नांदेड केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झालेले आहेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम चिंतन। श्रोतेहो, कार्यक्रमात आज अहिंसा याविषयी रेवती बेदरे यांचे विचार ऐकवीत आहोत।
2: अहिंसा परमो धर्म हे भारतीय संस्कृतीचे जीवनभूत तत्व आहे। मनुष्याची सुखद स्वाभाविक स्थिती म्हणजे शांतता होय। भारतीयांच्या रोमरोमात हे तत्व एवढे बिंबले आहे की इतर देशवासी म्हणतात भारतीय हवा म्हणजे अहिंसेची हवा। ज्यांनी ममतेचा अभिमानाचा त्याग केला आहे त्यांना असीम शांती प्राप्त होते। जेव्हा हृदय मन दोन्ही शांत असतात तेव्हाच मनुष्याला खरी विश्रांती मिळते। जर तुमच्या हृदयात सत्यता असेल तरच तुमचे चारित्र्य सुंदर असते। जेव्हा चारित्र्यात सौंदर्य असते तेव्हाच तुमच्या घरातील वातावरणात सुसंवाद दिसून येतो। घरात संवादिता असेल तेव्हाच राष्ट्र सुव्यवस्था असते। राष्ट्र सुव्यवस्थित असतील तरच विश्वात शांती असते। ज्याला अंतकरणाची शांती प्राप्त झाली आहे त्याला सर्व विश्व शांतीने परिपूर्ण असल्याचे प्रतीत होते। अहिंसा परमो धर्म तत्वाचे महत्व भारतास एकाएकी समजले असे नाही। या तत्वामागे हजारो वर्षाची मोठी तपश्चर्या आहे। या तत्वाभोवती भारतातील धार्मिक, राजकीय, सामाजिक चळवळी गुंफलेल्या आहेत। प्राचीन काळात मनुष्य दोन गोष्टीसाठी हिंसा करीत असे, एक म्हणजे भक्षणासाठी आणि दुसरे म्हणजे रक्षणासाठी। कालांतराने सद्विचारी माणसाला हिंसा अमान्य वाटायला लागली। वास्तविक वेदात गाय वाचवण्याचे प्रयत्न दिसून येतात। तुम्ही बासरी वाजवणारा कृष्ण त्यामागे गाय असे चित्र नक्कीच पाहिले असेल। गायीची थोरवी श्रीकृष्णाने भारतीयांना पटवून दिली आहे। गोकुळात वाढलेल्या गोपाळकृष्णाने मोठेपणी गायीचा महिमा वर्णन केला। प्रसंगी त्याची गवळट कृष्ण म्हणून थट्टा झाली। कृष्ण म्हणाला गोपाळ हे माझे दूषण नसून भूषण आहे। भगवान श्रीकृष्णाच्या अहिंसेची परंपरा पुढे भगवान बुद्ध आणि महावीर यांनी जोपासली आणि वाढविली। कामक्रोध वासना विकार यांचे बलिदान दया हवन करा अशी शिकवण त्यांनी समाजाला दिली। प्राचीन काळापासून अहिंसेचे प्रयोग करणाऱ्या भारतवर्षात एका महात्म्याने अहिंसेचा अत्यंत व्यापक अभिनव प्रयोग केला। तो महात्मा म्हणजे मोहनदास करमचंद गांधी। शस्त्राने शत्रूचे डोके उडविण्यापेक्षा त्यांच्या डोक्यातील विचार बदलावे आणि आपल्याकडे त्यांचे मन वळवावे हे गांधीजीच्या अहिंसेचे प्रमुख तत्व आहे।